0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग कोलकाता। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप और मैं हूं पॉपी आपके साथ ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो पर।

होंगी कम और गीत होंगे ज्यादा, ये है पॉपी का वादा। फिलहाल ए आर रहमान की एक सेंटिमेंटल ट्रैक से करते हैं कार्यक्रम का आगाज। बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए 107 FM रेनबो।

सूफी अंदाज का ये गीत और इस गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया था एआर रहमान ने और आवाज भी खुद एआर रहमान ने दिया। वैसे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से आप सुन रहे कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप और आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 2213-1341 डायल कर सकते हैं और हम तक पहुँच सकते हैं कुछ मीठी मीठी बातें करने के लिए। वैसे आपको बताऊं कि आजकल बहुत लोग बिजी चल रहे हैं भाई, खास करके बात कर रही हूँ महिलाओं की। जी हाँ, एक बहुत अच्छा योजना जो हमारे बीच आया हुआ है और इस योजना के कारण महिलाएं घर से बिल्कुल सुबह सुबह जाकर लाइन दे रही हैं और हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा योजना के बारे में। और इस योजना के तहत आप सभी जानते हैं कि परिवार की महिलाएं उन्हें 3,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपको साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि अब एक ही परिवार को के लिए एक खास फरमान जारी किया गया है कि अब एक ही परिवार की 2-3 महिलाओं को अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अगर आपके परिवार में 2 या 3 महिलाएं हैं और जिन्हें ये योजना मिल सकती हैं या मिलने का लाभ, इस योजना के लाभ को उठा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सारी की सारी महिलाएं वहां पर जाएं, क्योंकि अन्नपूर्णा योजना पर राज्य के मंत्री ने कहा है कि अब 2-3 महिलाओं को अलग अलग फॉर्म एक ही साथ भरना नहीं पड़ेगा। मतलब एक फॉर्म में ही आप 3 महिलाएं या 2 महिलाएं अपना नाम डाल सकती हैं, चूंकि वो एक परिवार से हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इस व्यवस्था से न केवल फॉर्म भरने की जटिलता कम होगी बल्कि लाभ वितरण भी बिल्कुल अधिक तेज और सुचारू तरीके से हो जाएगा। तो शायद मेरा ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम हमेशा अपने कार्यक्रम में एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, ये आकाशवाणी की विशेषता है कि एंटरटेनमेंट विथ इन्फॉर्मेशन। तो ये एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, एक ही परिवार में 2 या 3 महिलाएं हैं, तो एक ही फॉर्म में काम हो सकता है। तो फिर मैंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप इट इज यूजफुल टू यू। फिलहाल ऐसी ही कुछ यूजफुल बातों के साथ हमारा और आपका साथ बना रहेगा ओनली ऑन 107, क्योंकि पॉपी है आपके साथ। तो अगली आवाज नीति मोहन की, बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए।

सी बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

वैसे दोस्तों, सुबह से जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें ये तो मालूम ही है कि आज सुबह से हम बात कर रहे हैं कि पूरा विश्व आज विश्व समुद्र दिवस मना रहा है, लेकिन साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि 8 जून को आज ही के दिन विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है उसके लिए भी एक खास वजह है, आपको बताना चाहेंगे कि विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के इतिहास की जो जड़ें हैं वो सन 1990 के उत्तरार्ध से शुरू हुई, जब जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट और रोगी के एक समूह ने ये महसूस किया कि जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव डालने के बावजूद मस्तिष्क ट्यूमर को अन्य कैंसर की तुलना में जनता का बहुत कम ध्यान मिलता है। जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने साल 2000 में इसे एक वार्षिक आयोजन के रूप में औपचारिक रूप दिया, और इसके साथ ही इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अलायंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उसी तारीख के आसपास वैश्विक गतिविधियों का समन्वय करना शुरू किया, जिससे संदेश को कहीं अधिक ज़्यादा पैमाने में प्रसारित किया जाए और सिर्फ एक ही देश नहीं बल्कि पूरे

विश्व स्तर पर इसे बताया जाए। तो ये आज का दिन वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के नाम से भी जाना जाता है। और इतिहास की नींव स्पष्ट हो जाने के बाद ये जानना जरूरी है कि इस वर्ष का दिवस किस विषय पर केंद्रित है। हर साल कोई भी दिवस हो उसे हम एक थीम देते हैं और 2026 के विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस का विषय प्रारंभिक पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और निदान में आने वाली बाधाओं को दूर करना, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जहां MRI सुविधाएं और भी बहुत कुछ देखभाल सीमित है। प्रत्येक वर्ष मस्तिष्क ट्यूमर के उपचार में वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों को दर्शाने के लिए एक विषय को चुना जाता है और पिछले विषयों में बहुत सी बातें हैं जो बताई गई हैं, लेकिन इस साल जो इसका थीम है, हमने आपको बताया 2026 के विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस का विषय है प्रारंभिक पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ाना। दरअसल कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें पहले समझ नहीं आती, तो इस दिन के माध्यम से ये जागरूकता फैलाया जाता है कि इस बीमारी को किस तरह से इससे पूरी तरह से हम कहते हैं ना इसके सॉल्यूशन तक पहुंचे। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए आज का दिन तय किया गया है। वैसे बीमारी चाहे कोई भी हो, हम हमेशा ये चाहेंगे कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें और इसके लिए आपको बहुत सी सावधानी बरतनी पड़ेगी और ये सावधानी केवल और केवल आप ही कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं हो सकता। हाँ, हम आपको कुछ बातें बता सकते हैं लेकिन सुनना और उस पर अमल करना ये सिर्फ आप ही पर है। फिर अगर आप इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो दिमाग भी ठंडा रहता है और जिगर भी ठंडा।

दिलबर राव और अमीना रफीक की आवाज में आपने सुना ये खूबसूरत गीत तेरे इश्क में, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड द सॉन्ग। फिलहाल एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार पॉपी करेगी आप सबका।

Once again, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं EIRFM रेनबो पर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। जी हाँ, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारा वही ओल्ड एंड गोल्ड नंबर 2213-1341। फिलहाल जब तक आप नंबर घुमाते हैं, तब तक हम आपको एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं। फिल्म का नाम रुस्तम, आवाज अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की।

कम आइए इस खूबसूरत गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये गाना मैंने अचानक क्यों चूज किया, क्योंकि यहां पर जो शब्द मुझे प्रेरित कर रहा है बताने के लिए वो है आम। आम के बारे में आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी और वो ये है कि भारत विश्व में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष 26 करोड़ मेट्रिक टन से अधिक आमों का उत्पादन होता है और 100 नहीं 200 नहीं 500 नहीं 1000 से अधिक किस्मों की खेती की जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2023-24 में निर्यात का जो मूल्य था वो $10 मिलियन से ऊपर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इसका जो क्वांटिटी था वो था मोर देन 29,000 टन। आगे भी आपको बताना चाहेंगे वो ये कि भारत ब्रिटेन को 5.5 टन ताजा आम्रपली आम का निर्यात ऑलरेडी कर चुका है। 1.5 करोड़ टन आम्रपली। आम्रपली एक खास आम होती है, आपने सुना होगा हिमसागर, आपने सुना होगा लंगड़ा, आपने सुना होगा बैगन फली अल्फांसो। लेकिन आपको साथ में बता दें कि आम्रपली की पहली खेप ब्रिटेन पहुंच गई है और अगले सप्ताह भी एक खेप इंग्लैंड भेजने की तैयारी की जा रही है। 4 टन आम्रपली की पहली खेप दुबई भेज दी गई है और हर साल करीब 200 एकड़ में इसका प्लांटेशन किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3100 यानी कि 3100 एकड़ में आम की खेती की जाती है, इससे भी ज़्यादा की जाती है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी रुकावट बन रही है रेवेन्यू में, वो ये है कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हिमसागर के निर्यात पर मौसम ने कहर ढा दिया। जी हाँ, लगातार बारिश और उसके बाद बड़े तापमान के कारण आमों पर काले धब्बे उभर कर आ गए हैं, जिससे बड़ी मात्रा में निर्यात तो संभव नहीं है। ये धब्बे रोग संक्रमण के शुरुआती संकेत माने जाते हैं और इससे निर्यात में ज़रा कमी आ जाती है। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर निर्यात नहीं हो रहा है तो हम वो काला धब्बा थोड़ा सा हजम कर लेंगे और ये आम हम बाज़ार में ज़रूर आएगा और हम इस आम का सेवन करेंगे, क्योंकि आम इज़ द किंग ऑफ द फ्रूट्स। भाई आम को हम कैसे छोड़ सकते हैं, इसको तो अंग से लगाना ही है। यानी कि अपने मुंह में तो डालना ही है।

0: खुशी की बात यह है कि मॉनसून का आगमन हो गया है और मॉनसून का मौसम भले ही सुकून और ठंडक लेकर आता है, लेकिन इसके साथ एक आम समस्या आती है, वो है सीलन की। घर की दीवारें, फर्श और छतों में सीलन बस जाती है और न केवल घर की सुंदरता प्रभावित होती है बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो इसके लिए बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें एक चुटकी नुस्खे आपको तो सुनाना ही है।
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: जी हाँ, एक चुटकी नुस्खे में आज हम आपको बताएंगे कि बारिश में लकड़ी के फर्नीचर और दीवार के बीच हवा नहीं लगनी चाहिए, वरना फंगस और फफूंदी लग सकती है और फर्नीचर को कम से कम 4-5 इंच दीवार से दूर रखें। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दीवार की सीलन वो झट से फर्नीचर को पकड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन दीवारों में सीलन लग जाती है वहाँ सीमेंट आधारित वाटरप्रूफ पेंट या कोटिंग लगवाएं और ये लंबे समय तक के लिए आपके सीलन को रोक सकता है। साथ ही सीलन हटाने के लिए एक छोटी सी बात आप कर सकते हैं, मतलब वो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, न दिमाग पे दबाव न शारीरिक दबाव। उसके लिए हर घर की महिलाओं को खास करके हम बताना चाहेंगे कि सीलन हटाने के लिए एक कटोरी नमक या चारकोल कमरे में रखें और ये नमी को सोख लेता है। वैसे भी आप सब जानते हैं कि किचन

इनका नमक अगर आप डब्बे को खोल कर रखते हैं तो बारिश में वो बिल्कुल नमक गीला सा हो जाता है, क्योंकि वातावरण का जो मॉइस्चर है, आर्द्रता है, नमी है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर एब्जॉर्बर है और हर 3 से 4 दिन में इन्हें बदलते रहें, ताकि आपको ये आपका जो घर है और आपका जो फर्नीचर है वो बिल्कुल खूबसूरत लगे और खूबसूरती देता रहे। तो ये थी एक चुटकी नुस्खे के लिए बात, और बहुत वक्त ज़्यादा हमारे पास नहीं है तो आपको बताना चाहेंगे। बताना क्यों चाहेंगे, पहले आइए गीत सुनाते हैं। जब बात घर की हो रही है तो घर से जुड़ा एक खूबसूरत गीत आपको सुनाएंगे, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा ने।

सिस्टर यानी रखो बाय बाय सिस्टर एंड ब्रदर। जी हाँ, इस बाय बाय सॉन्ग के साथ पॉपी को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी 11:10 पर ऑन FM गोल्ड 100.1 FM गोल्ड पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: আমাকে খুব জলদি কিছু জিনিস পাঠাতে হবে, কোন সুপার ফাস্ট অপশন আছে নাকি?
1: আরে ভাই একদম, ইন্ডিয়া পোস্ট নিয়ে এসেছে 24 স্পিড পোস্ট, মানে পরের দিনই নিশ্চিত ডেলিভারি।
0: তাই নাকি? মানে দরকারি ডকুমেন্ট থেকে পার্সেল বা যে কোনো জরুরি জিনিস সবকিছু এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে?
1: আরে হ্যাঁ ভাই, রয়েছে রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং, পকেট ফ্রেন্ডলি রেট, আর সবচেয়ে জরুরি ওটিপি ভিত্তিক নিরাপদ ডেলিভারি। শুধু ভরসা রাখো ইন্ডিয়া পোস্টের উপর।
2: বিষয়টা জানতে আপনার কাছের পোস্ট অফিসে যোগাযোগ করুন বা ভিজিট করুন indiapost.gov.in।
3: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
4: आकाशवाणी कोलकाता के एफएम रेनबो चैनल पर प्रस्तुत है कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सखी निवास योजना की। सखी निवास योजना कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्वावलंबन में निरंतर वृद्धि हो रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों से दूर जाकर नौकरी, प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए सुरक्षित, सुलभ और किफायती आवास की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने सखी निवास योजना लागू की। सखी निवास योजना मूल रूप से वर्किंग वुमेन हॉस्टल। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत समाहित किया गया, जिसके बाद वर्किंग वुमेन हॉस्टल योजना का नाम बदलकर सखी निवास कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना है यह सखी निवास योजना, और इसके कार्यान्वयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन मुख्य रूप से यह योजना संचालित होती है केंद्र सरकार के अंतर्गत। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल उपलब्ध कराने की योजना कई दशकों से संचालित थी, किंतु मिशन शक्ति के गठन के बाद वर्ष 2022 में इसे सखी निवास नाम दिया गया और साथ ही साथ किया गया इसके दायरे का विस्तार। बात करें अगर इस योजना के मुख्य उद्देश्य की, तो कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराना, रोजगार या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को घर से दूर रहने की सुविधा देना, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और

0: हैं अविवाहित कामकाजी महिलाएं, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं, ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पति या परिवार उसी शहर में नहीं रहते हैं, नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाएं, उच्च शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं। और इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं में सुरक्षित आवास, स्वच्छ रहने की व्यवस्था, सुरक्षा कर्मी, सामुदायिक सुविधाएं, भोजन एवं रसोई की व्यवस्था, बच्चों के लिए डे केयर की सुविधा प्रदान की जाती है। महिलाओं के साथ उनकी बेटियां 18 वर्ष तक तथा छोटे बेटे 12 वर्ष तक रखने की अनुमति भी दी जा सकती है। आज सखी निवास योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत मांग आधारित मॉडल पर संचालित की जा रही है। पहले जहां मुख्य ध्यान भवन निर्माण पर था, वहीं अब किराए के भवनों में भी हॉस्टल संचालित किए जा रहे हैं ताकि महिलाओं को शीघ्र सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और स्थानीय स्तर पर इन हॉस्टल्स को संचालित किया जाता है। सखी निवास योजना ने देश भर में हजारों महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया है। सरकार के अनुसार देश में सैकड़ों कार्यरत महिलाएं छात्रावास संचालित कर रही हैं। वर्ष 2023 तक लगभग 494 कार्यरत महिला छात्रावास देश भर में कार्यरत थे और उनके नए छात्रावासों की स्थापना की प्रक्रिया भी जारी थी। महिलाओं के लिए 50 नया किराया आधारित सखी निवास शुरू करने की योजना भी बनाई गई है। देश के विभिन्न राज्यों में नए सखी निवास हॉस्टल्स का विस्तार किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। सखी निवास योजना एक आवास योजना नहीं बल्कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है। सुरक्षित रहने की सुविधा मिलने से महिलाएं रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों का लाभ अधिक आत्मविश्वास के साथ उठा पाती हैं। यह योजना नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति की अवधारणा को मजबूत करती है। अंततः कहा जा सकता है कि सखी निवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण महिला सशक्तिकरण पहल है, जो कामकाजी और प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और किफायती आवास उपलब्ध कराती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत निरंतर विकास पा रही है। वर्तमान समय में जब महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी बढ़ रही है, तब सखी निवास जैसी योजनाएं उनके आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो चैनल पर आपने सुना सखी निवास योजना।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर तीन का तड़का मैं हाजिर हो गई हूँ आपके साथ। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा बना रहेगा हमारा साथ पूरे 4 बजे तक। तो चलिए फिर लगाते हैं ढिंका चिका का तड़का। कार्यक्रम है तीन का तड़का, जुड़ चुके हैं आप दिल से दिल तक, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

बजकर 17 मिनट कार्यक्रम 3 का तड़का, जहां 12 महीने में 12 तरीकों से प्यार जताने की बात की गई है। और अगर बात करूं मैं प्यार जताने की, प्यार करने की, प्यार निभाने की, तो इसमें सबसे टॉप मोस्ट पे रहती है दोस्ती। जी हाँ, दोस्ती ही वो रिश्ता है जिसे निभाने के लिए हमें प्रकृति ने मजबूर नहीं किया है, हमारी जो मन की प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसने हमें जोड़ा है दोस्ती के रिश्ते से। और अगर बात करें सोशल मीडिया के हवाले से, तो आज के दिन हम सब मना रहे हैं नेशनल फ्रेंडशिप डे। कार्यक्रम 3 का तड़का में लगाते हैं अगले गीत का तड़का।

ख्वाब है या है कोई जादूगरी? और इसी प्रश्न के साथ दोस्ती क्या है, ख्वाब है या जादूगरी? आज का कार्यक्रम तीन का तड़का यहीं तक और अब हम रुक करेंगे अपने अगले कार्यक्रम का। एनसीईआरटी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग, सुनते रहें, साथ बने रहें, जुड़े रहें दिल से दिल तक 107 FM रेनबो से।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
3: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
3: लिखते हैं, आदरणीय

0: अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
1: जी।
0: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
1: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी। परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है। कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से। अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
1: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
1: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर भारत के किस गांव में पड़ता है?
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी

0: की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
1: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
1: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवारी गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई, उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ
3: देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
4: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
4: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
3: ओ, अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
4: ठीक है।
3: अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
4: भाई
3: हा?
4: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
3: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
4: ठीक है।
3: चल चल चल चल, चल।
4: हाँ, हाँ,
3: हम
4: हाँ,
3: दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
4: हाँ, ठीक है,
3: चल,
4: ठीक है,
3: चल, चल, चल, चल, चल, चल,
1: चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
5: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
2: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
6: कहाँ है कोच्चू और मंगला? है
7: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था।
0: आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राज वर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान।

0: नीलकांतन भट्टातिरिपद का बड़ा बेटा, इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
1: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
0: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
1: इसमें क्या परेशानी है, इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
0: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
1: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से

0: स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए, और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: इस गीत की लाइन में कहा गया आओ ना पीछे मेरे आओ, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे ये जो दोस्त हैं, हमारे जो श्रोता बंधु हैं, वो हमारे पीछे नहीं बल्कि हमारे साथ चलते हैं। आप सभी सुनने वालों का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम छायालोक। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट पूजा, और कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं पायल। स्वागत है आपका पायल कार्यक्रम छायालोक सुरों की महफिल में।
1: थैंक यू
0: पायल। आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: बेलघोरिया से।
0: तो पायल आप ये बताइए, अभी तक अक्सर जब हमारे प्रोग्राम में हमारे दोस्त शामिल होते हैं तो हम उन्हें कोई एक विषय देते हैं, उस विषय पर हमारी बातचीत आगे बढ़ती है। आज मैंने अभी तक विषय बताया नहीं, लेकिन आप हमारे स्टूडियो में हाजिर हो चुकी हैं। तो ये जो कार्यक्रम का पहला गीत हमने सुना अलका याग्निक, अनु मलिक और रेमो फर्नांडिस की आवाजों में, जिसमें पर्दे पर कई कलाकार नजर आए, तो आप बताइए आज का हमारा ये जो विषय है, जो सुरों की महफिल में हमारे साथ आर्टिस्ट रहने वाले हैं, वो कौन रहने वाले हैं?
1: आर्टिस्ट एक तो बांग्ला बोलवे दीदी, हमारे एक तो हिंदीटा अनकंफर्टेबल है।
0: हिंदी थोड़ी अनकंफर्टेबल है, और हमारी यही कोशिश है कि हमारे प्रोग्राम्स को सुनते सुनते आप थोड़ा सा एक और भाषा सीख लीजिए। आज के ये प्रोग्राम चोलचे सुरों की महफिल, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अपनी हिंदी और बांग्ला मिश्रित भाषा में समझाने की। ए प्रोग्राम में कौनटा आर्टिस्ट अमदर शौंगे थाकबे आगामी 2 घंटा?
1: ओके, आर्टिस्ट बोलते तुम्हें सिनेमा आर्टिस्ट बोलते हो ना कि सिंगर
0: दिखते के? यही तो गुगली है पायल, कौन होने वाला है आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ?
1: अच्छा हेलो।
0: हाँ जी,
1: হ্যাঁ বলছি দিদি, আজকে কিন্তু একটা বেস্ট ফ্রেন্ড ডে রয়েছে, তো আজ যদি আমরা বেস্ট ফ্রেন্ড নিয়ে কথা বলি তো বেটার হয়। আর আর্টিস্ট বলতে আমি যদি বলতে চাই তো আজকে সিনেমা আর্টিস্ট বলতে আমরা শাহরুখ খানকে নিয়ে কথা বলতেই পারি কি?
0: आज बेस्ट फ्रेंड डे है और पायल हमारी बेस्ट फ्रेंड साबित हो चुकी है, क्योंकि कार्यक्रम में सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रेजेंस बताई है जताई है। तो बेस्ट फ्रेंड डे हम बिल्कुल सेलिब्रेट करते रहेंगे, अपने दोस्तों को गाने डेडिकेट करते रहेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन पूरे 2 घंटे जिस आर्टिस्ट का साथ हमारे साथ बना रहेगा वो आर्टिस्ट कौन है, ये अभी संशय बना हुआ है, पर्दा उठाया जाए या कि फिर इस खूबसूरत शाम का थोड़ा और मजा लिया जाए। लेकिन उसी महबूब के साथ, जिस महबूब के उपस्थिति के साथ हमने सुने थे इस कार्यक्रम के पहले गीत को कई सारी आवाजों में।

दोस्तों, इस खूबसूरत सी शाम में वो कलाकार जो आज पूरे 2 घंटे हमारे साथ बने रहने वाले हैं, उनके बारे में बता दूं, वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक सफल व्यवसायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और उनके बारे में जो सब

सबसे खास बात है वो ये है कि लोग उन्हें कहते हैं फिटनेस क्वीन। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब पर्दा उठ चुका है और आप समझ चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम में कौन सी वो कलाकार हैं जो रहने वाली हैं पूरे 9 बजे तक हमारे साथ, फिलहाल 19:19 और 19 सेकंड।

तो बता दूं आपको कि आज के इस कार्यक्रम सुरों की महफिल में आवाज और साज बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ अदाकारी का साथ। अदाकारा अश्विनी, जी हाँ, अश्विनी शेट्टी होंगी हमारे साथ, जिनका जन्म हुआ 8 जून को कर्नाटक मैंगलोर में। अभिनय, फिटनेस, व्यापार, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय खेल, रियलिटी शो बिग ब्रदर में अपनी दमदार उपस्थिति और विजेता रहने वाली अश्विनी शेट्टी, जिन्हें हम सब शिल्पा शेट्टी के नाम से जानते हैं। शिल्पा शेट्टी पर फिल्माया गया या उनकी किसी फिल्म से कौन सा गीत सुनना है आपको, या कि फिर अपने किस दोस्त को आप करना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम सुरों की महफिल का अगला गीत डेडिकेट, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं दिल से दिल तक। 2213-1341 है हमारा नंबर, जिसे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे इस नंबर को, बिना बताए ही आप जुड़ जाते हैं। दिल से जुड़ने के लिए किसी खास नंबर की जरूरत नहीं होती, वो नंबर तो बस यूं ही हमारे रगों में बहता है। और पढ़ते हैं चेहरा, किताबें तो आपने बहुत सी पढ़ी होंगी, सुनते हैं उस फिल्म से गीत जिस फिल्म से हिंदी सिनेमा जगत में पदार्पण किया था शिल्पा शेट्टी ने।

0: जी हाँ दोस्तों, किताबों में तो सिर्फ वही लिख पाते हैं हम जो लिख सकने के लायक होता है, लेकिन हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारा हाव भाव बहुत कुछ बयां कर देते हैं। पहले भावनाएं जन्म लेती हैं, फिर हम उन्हें शब्दों में ढालते हैं। और फिलहाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हाजिर हो चुके हैं हमारे दोस्त, रेगुलर हमारे कार्यक्रम में शामिल होने वाले जीतू। जीतू कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल बहुत अच्छी। और सुनाइए, मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत ही अच्छा है और बारिश हो रहा है, लेकिन ये जो गर्मी है अभी तक जा नहीं रहा है।
0: तो गर्मी का मौसम है, जाहिर सी बात है कि गर्मी ही रहनी है ना?
1: जी बिल्कुल जी, और मौसम अपना समय पे ठीक चला जाएगा। और आज जो बातें कर रही है आप फ्रेंडशिप डे के बारे में, मेरे सभी सुनने वाले दोस्तों को मैं फ्रेंडशिप डे के मतलब वही हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। और एक मेरा दोस्त है, पास में रहता है, कृष्णा, उनको मैं अपना मतलब ये जो है फ्रेंडशिप मतलब उनको ये रेडियो के माध्यम से मतलब उनको मतलब ये बधाई देना चाहता हूँ।
0: बधाई देना चाहते हैं कृष्णा को, जीतू, हमारे इस रेनबो चैनल के माध्यम से, यानी कि दिल को जोड़ना चाहते हैं।

से और कार्यक्रम चल रहा है छायालोक सुरों की महफिल, जहां सुर और साज के साथ आज एक कलाकार हमारे साथ शामिल रहने वाली हैं पूरे इस कार्यक्रम के दौरान, शिल्पा शेट्टी। बचपन में शिल्पा वॉलीबॉल कोच बनने का सपना देखा करती थी। फिल्मों में आने से पहले खेलों की तरफ था उनका झुकाव। वो बॉम्बे जोन की एक बेहतरीन वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और इसी खेल में अपना करियर बनाना चाहती थी। जिंदगी हमें कब कहां ले जाए ये जिंदगी को पता है। हमारा काम है जिंदगी के हर लम्हे को जी भर के जी लेना। और हमारे एक दोस्त हाजिर हुए थे कार्यक्रम में, शशांक। शशांक ने फरमाइश की थी फिल्म छोटे सरकार से गीत की, तो चलिए सुना देते हैं शशांक को और साथ ही साथ हमारे सभी श्रोता बंधुओं को, हमारे दोस्तों को फिल्म छोटे सरकार से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में इस गीत को।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: सुरों की महफिल।

5 जून 1975 मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की शिल्पा शेट्टी ने। और बॉलीवुड में कदम रखा फिल्म बाजीगर से। शुरुआती दौर में शिल्पा शेट्टी रोमांटिक फिल्मों में नजर आई, हालांकि शुरुआत उन्होंने की थी

सस्पेंस थ्रिलर से, लेकिन वहाँ वो बहुत सशक्त भूमिका में नहीं थी। हालांकि फिर भी उन्हें नामांकन मिला था सहनायिका का। लेकिन आगे चलकर शिल्पा शेट्टी अपनी अदाकारी के बल पर बॉलीवुड में सशक्त अभिनेत्रियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने में सक्षम हुई। और बात की जाए अगर उनके रोमांटिक फिल्म्स की, तो उनमें सबसे पहले जिस फिल्म का जिक्र आता है वो फिल्म है धड़कन। फिल्म धड़कन और नदीम श्रवण के संगीत का जादू। सूफी किंग, कवाली किंग नुसरत फतेह अली खान की आवाज। जी हाँ दोस्तों, फिल्म धड़कन शिल्पा शेट्टी के करियर की महत्वपूर्ण फिल्म रही। 7:50 हो चुके हैं, यानी कि कार्यक्रम छायालोक के पहले भाग में अब सिर्फ 10 मिनट का समय बचा है हमारे पास। कार्यक्रम के अगले भाग में हम फिल्म धड़कन से एक नहीं बल्कि दो गीत सुनेंगे। फिलहाल आप सभी को सुनाती हूं मैं उदित नारायण और अनुराधा पौड़वाल की आवाजों में शिल्पा शेट्टी की ही फिल्म, शिल्पा शेट्टी पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म रिश्ते से।

शिल्पा शेट्टी तेलुगु, कन्नड़, तमिल फिल्मों में भी नजर आई और साथ ही साथ शिल्पा शेट्टी पर फिल्माए गए आइटम सॉन्ग्स भी बेहद धूम मचा देने वाले रहे। आज भी उन्हें बहुत ही प्यार से सुना जाता है। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन पर फिल्माए गए दो आइटम सॉन्ग्स भी हम सुनने वाले हैं। फिलहाल पहले घंटे का आखिरी गीत

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम छायालोक में। सोमवार की शाम सुरों की महफिल और आज की महफिल गीतकार संगीतकार के साथ साथ अभिनय कलाकार शिल्पा शेट्टी भी हैं हमारे साथ। और शिल्पा शेट्टी के जीवन की बेहद खास फिल्म धड़कन के गीत के साथ शुरुआत हुई कार्यक्रम के दूसरे भाग की अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें। गीत समीर का, संगीत बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, नदीम श्रवण का। और ब्रेक पर जाने से पहले कार्यक्रम के पहले घंटे के आखिरी मोड़ पर मैंने आपसे वादा किया था कि आपको सुनवाऊंगी इस फिल्म से एक नहीं बल्कि दो गीत। और दूसरा गीत गजलनुमा कव्वाली, जिसे दिग्गज गायक कलाकार नुसरत फतेह अली खान ने गाया था। और इसकी जो सबसे खास बात है, ये बेटी के विदाई का गीत, और उसमें एक लाइन आती है, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। और इस गीत की इस लाइन को गाते समय उनका गला रुंध जाता था, गला भर आता था और आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। इसी एक लाइन पर उन्होंने कई टेक्स लिए थे, जबकि नुसरत फतेह अली खान साहब वन गो में अपने गाने गाने के लिए जाने जाते थे। एक ऐसा गीत जिसके बिना आज भी, वर्ष 2000 में आई थी फिल्म धड़कन और 2000 से 2026 यानी कि लगभग 26 सालों बाद भी, अगर किसी शादी के फंक्शन में आप जाएंगे, कहीं बेटी की विदाई का माहौल होगा, कहीं दूल्हे की चर्चा हो रही होगी, तो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है गीत जरूर आपको कहीं बजता गाती गुनगुनाती सुनाई दे जाएगा।

जिंदगी का अर्धशतक पूरा कर लेने वाली शिल्पा शेट्टी। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ बनी हुई हैं शिल्पा शेट्टी जिन्हें फिटनेस क्वीन कहा जाता है। तो आप सभी के अंदर भी ये जानने की इच्छा जाग रही होगी किस तरह से रखती हैं अपने आप को फिट, क्या है उनका फिटनेस मंत्रा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को बैलेंस रखती हैं, कैसे क्या है उनका फिटनेस रूटीन, किन किन योगासनों को शामिल करती हैं, क्योंकि ये जून का महीना है और जून का महीना पूरी तरह से हम डेडिकेट कर देते हैं योगा को। 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आज 8 जून को हम मना रहे हैं शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन। 8:21 और 21 सेकंड, छाए लोग सरों की महफिल सजी है, पूजा है आपके साथ और कार्यक्रम में अब बैक टू बैक हम दो गीत सुनेंगे। अभी हमने देखा शिल्पा शेट्टी को दुल्हन के रूप में, फिल्म धड़कन से सुना हमने दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है और बिल्कुल अब नए अंदाज में 90 के दशक से शुरुआत करके पहुंच जाएंगे 2000 के टाइम पीरियड में, यानी कि पूरे एक एरा को क्रॉस करते हुए 20वीं सदी से 21वीं सदी तक जलवा कायम है, बरकरार है। सुनेंगे एक के बाद एक दो आइटम सॉन्ग्स फिल्माए गए हैं शिल्पा शेट्टी पर। तो चलिए नए दौर से शुरुआत करते हैं और फिर लिए चलूंगी आपको पुराने दौर में।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो चैनल जुड़े हैं आप दिल से दिल तक छाए लोग। सुरों की महफिल सजी है और आज इस महफिल में हमारे साथ हैं शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी जिन्हें फिटनेस क्वीन कहा जाता है, क्या है उनकी एनर्जी, उनका राज, किस तरह से करती हैं वो वर्कआउट? शिल्पा का वर्कआउट रूटीन बेहद संतुलित है जिसमें योग, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल है, जिससे उनके शरीर को आराम मिलता है, इसलिए वो करती हैं सिर्फ 5 दिन वर्कआउट। बात करें अगर उनके वर्कआउट प्लान की, तो योगा करती हैं वो अपने माइंड और बॉडी को बैलेंस करने के लिए और योग को अपने फिटनेस का मुख्य हिस्सा मानती हैं। योगा उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, दिमाग को रखता है बिल्कुल शांत और अक्सर वो सोशल मीडिया पर योगा का प्रमोशन करते भी दिखाई देती हैं। सूर्य नमस्कार उनके जिंदगी का खास हिस्सा बन चुका है, उससे उनका पूरे बॉडी को बेहतर तरीके से वार्म अप कर पाती हैं वो। हठ योग बनाता है उनके शरीर को लचीला और प्राणायाम स्ट्रेस कम करने और एनर्जी को बढ़ाने के लिए काम आता है। योगा के बाद 10 मिनट का मेडिटेशन शिल्पा शेट्टी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। फैट बर्न के लिए कार्डियो एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करती हैं, जिससे उनका वजन रहता है कंट्रोल में और मसल्स को टोन रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे खास प्रैक्टिस है वो है खान पान पर नियंत्रण।

यानी कि दिन भर के कैलोरी काउंट्स पर काफी ध्यान देती हैं। अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स जरूर शामिल करती हैं शिल्पा शेट्टी। तो उनके फिटनेस के सारे राज को हमने जान लिया है और अब सुनते हैं आनंद राज आनंद की आवाज। फिल्म है हमारी परदेसी बाबू।

जी हाँ दोस्तों, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, जहाँ एक लड़की बनना चाहती हो वॉलीबॉल खिलाड़ी और बन जाए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक्ट्रेस, बन जाए एंटरप्रेनर और साथ ही साथ वो बन जाए फिटनेस आइकॉन। वर्ष 2007 में शिल्पा शेट्टी ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर की रही विनर और यहां से उनके जीवन की एक नई शुरुआत हुई। फिलहाल आप सबके लिए इन दिनों फ्रॉम लाइफ इन मेट्रो।

जी हाँ दोस्तों, शिल्पा शेट्टी ने अपने आप को मोहब्बत करने की पूरी पूरी इजाजत दे दी। वर्ष 2009 में कर ली बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी। उनके दो बच्चे हैं उनकी जिंदगी में। जी हाँ, उनके बच्चे, उनका बेटा

यान और बेटी समीशा उनके हर जन्मदिन पर उनके पति राज कुंद्रा सोशल मीडिया पर बेहद भावुक और प्यारे पोस्ट लिखकर उन्हें अपनी प्रेरणा बताते हैं कि उनकी जिंदगी में कितनी खास हैं शिल्पा शेट्टी। सोशल मीडिया पर भी बेहद एक्टिव रहा करती हैं शिल्पा शेट्टी।

आकाशवाणी कोलकाता का FM रेनबो चैनल, जिसे आपने ट्यून किया है 107 मेगाहर्ट्ज़ पर, और घड़ी की सुइयां कह रही हैं बस पूजा आज के लिए इतना ही। होगी आपसे मुलाकात फिर किसी सुबह फिर किसी शाम। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे शिल्पा शेट्टी की। मॉडलिंग से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाली, एक लंबी पारी खेलने वाली, एक अलग से व्यक्तित्व की एक ऐसी अभिनेत्री जो आज भी दौड़ में शामिल न होकर भी दौड़ की अगली पंक्ति में है। रियलिटी शोज में नजर आती हैं शिल्पा शेट्टी, योगा कैंपेन में नजर आती हैं शिल्पा शेट्टी। 90 के दशक से शुरू करके आज भी युवाओं की पसंदीदा शिल्पा शेट्टी। स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए गुड नाइट, शुभरात्रि, शबा खैर। अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजें छोड़े चलती हूँ आप सभी सुनने वालों के लिए, तो दिल थाम कर गाइए आप सभी।